यादवा धने उले गरी बोले बोल उदरी नर वे पागु उदे बोल दे बे थला उवे मी छे तने छिर और जिर मुदुल जेना बावन बावन या छिर के उरे ने उदन दर बोल बोल छानातनी आ उमन ओल्सिन कौ भिंगवांग ने अरब कर होन मुरुन दन दोते येल्ला नुले जो